पटक बैग अफ द इयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटिजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटिजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।

0: न डराओ बाबू न डराओ, सांप का कुछ न करे थे, सांप कुछ न ही करत है। अच्छा वो देखो वो अपन रास्ता चली गवा कुछ की हिस्सो, और सब सांप विशालु नहीं होते है ना।
1: विशालु है कि नहीं कैसा चिन्ह है अम्मा?
0: हाँ बाबू, नेपाल में मिले वाले विशालु सांप के बारे में सुनो। एक ठो होते करेंट जोन प्राय रात के समय में घर भीतर हल सकत है, एक दशक बाद ना ही पिरा सकत है, लेकिन दशक बाद शरीर के भाग न चलक मेर से सांस लिए कठिन हुए मेर से पक्षघात हो सकत है। और ऐसे होते हैं गोहवन अर्थात फेटारा जोन बहुत रिसहा मेर के होते हैं और फाड़ बनावत हैं। गोहवन सांप दिन या रात दोनों ओकत दिखाते हैं, और प्राय सवेरे संझा के दिखाए वाले एक दशक बाद पक्षघात हो सकत है।
1: अच्छा,
0: और दूसर होते हैं हरियो जात के सांप, एक दशक बाद दस लिहा भाग फूल जात है और बहुत पिरात है, खून पातर हो के रक्त श्राव हो सकत है। वही मेर से हमरन के देश की तराई के सब भूभाग में मिले वाले गंडाइस जौने के ऊपर बाघ के जिस बुट्टा होत है, एकरे दसाई के बीमारियां कमे मात्रा में मिलत है, लेकिन एकर दसाई एकदम खतरनाक होत है।
2: बसायाम और बाली काटे समय में सांप के कटाई अथवा दसाई के घटना सब बहुत होत है। बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप सब के कारण सांप के वासस्थान नष्ट होत के सांप दसाई के घटना सब अधिक होत मिलत है।
3: ढेर जैसे सांप के दसाई हानिकारक नहीं होते, तब वो सांप दसिन लीज तो तुरंत निर्वय के उपचार केंद्र में चल जाए चाहिए।
2: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नकचेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
5: नयाँ नेपाल निर्माणको आधार निरन्तर सुन्दै रहनुहोस् सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
6: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना।
7: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ BNB हस्पिटलका हाड जोड्ने नसा तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
6: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक अल्सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुतो, दाज, पुतले, दुबे, चाया, डन्डीफोर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाड जोर्नीका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, जोर्नीहरू दुख्ने, नचल्ने, नसा च्यापिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यापिएको, भाँचिएको, हाड जोर्नीका विशेष अपरेसन र बालरोगसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
7: सम्पर्क पाल्पा भैरव मेडिकल हल श्रवण पथ बुटवल साझा हस्पिटलको अगाडि।
6: सम्पर्क नम्बर 071534905, 071553905 र मोबाइल 98570810।

0: युनाइटेड अस्पताल बारदिङ्गा चार ठाकुरापुर कपिल वस्तुमा बिरामीहरूका लागि थप नयाँ सुविधाहरू।
1: कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर गोविन्द रावत, छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, मुटु रोग, मृगौला रोग, पेट र आन्द्राको समस्या, कलेजो, थाइराइड र मधुमेह सहितका रोगहरूको पूर्ण परामर्श र उपचार।
0: हाड जोड्नी नसा तथा बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खानद्वारा हाड जोड्नी सम्बन्धी समस्या, हड्डी भाँचिएको, रदहरू राख्ने निकाल्ने, नसा च्यापिएको लगायत बाथरोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ। वरिष्ठ फ्यामिली फिजिसियन तथा जीपी सर्जन डाक्टर पूर्ण बहादुर घरतीद्वारा विशेषज्ञ सेवा सहित मेजर तथा माइनर अपरेशनहरू, पाठेघर खाल्ने, चिरेर बच्चा निकाल्ने, नर्मल डेलिभरी सेवा, एपेन्डिसाइटिस, हाइड्रोसेल हर्निया, पित्तथैलीको ढुङ्गा निकाल्ने लगायतको साना तथा ठुला अपरेशनहरू। वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठद्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा, अन्य ओपीडी सेवा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म, डाक्टर योगेन्द्र थापाद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा।
1: युनाइटेड अस्पताल बाढगङ्गा 4 ठाकुरापुर कपिल वस्तु, सम्पर्क 076-550-200, मोबाइल नम्बर 98-570-55-138।
0: अब ढुक्क हुनुहोस्, विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै।
2: लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्रहाली बुटवलमा आधुनिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा शुरू भएको अनुरोध।
3: बुटवलमै पहिलो पटक शरीरको कुनै अङ्गको लिगामेन्ट च्यातिएको, स्पोर्ट्स इन्जुरियन्स साथै हाड जोड्नी, नसा तथा ट्रमा वा दुर्घटना सम्बन्धी बिरामीको उपचार बीएनबी हस्पिटल काठमाडौँबाट अर्थोस्कोपी सर्जरी र स्पोर्ट्स इन्जुरीमा फेलोसिप गर्नुभएका डाक्टरबाट आधुनिक विशेषज्ञ सेवा शुरू भएको छ। विशेष गरी हाड जोड्नी भाँचिएको, लिगामेन्ट च्यातिएको बिरामीहरूको अपरेशन दूरबीनको माध्यमबाट गरिन्छ।
2: साथै वीर अस्पताल नेम्स काठमाडौँका फिजिसियन डाक्टरबाट उपचार सेवा र वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टरबाट इको ईसीजी को माध्यमबाट मुटु तथा छाती रोगको उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदै पूर्ववत सेवाहरू,
3: नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा,
2: स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा,
3: जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी विशेषज्ञ सेवा,
2: शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा,
3: दाँत तथा मुख रोग विशेषज्ञ सेवा,
2: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ सेवा,
3: हिस्टो साइटो बायोप्सी हार्मोन जाँच गर्ने प्याथोलोजिस्ट डाक्टर सहितको प्रयोगशाला,
2: फिजियोथेरापी विशेषज्ञ सेवा,
3: आईसीयू एनआईसीयू डिलक्स बेड सहितको इन्डोर सेवा सञ्चालन भइरहेकोले निजी क्षेत्रको जेठो एस हस्पिटलबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लिनुहुन अनुरोध छ।
2: सम्पर्क लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवल छ, साबिक लुम्बिनी नर्सिङ होम प्राली, फोन 071-531-641 र 535-641।
4: हे भगवान, यो टोयलेट भुर्रेर पानी पनि माथि आउनलाई सक्यो, कति झन्झट भएको, कला बोलाउने होला।
5: ढुक्काउनुहोस्, यस्तो बेला त अनुप किसान सेनेटरी बोलाउने हो, 5 मिनटमै आउँछन्, सेफ्टी ट्याङ्की र रिङ सफा गरेर गइहाल्छन्।
6: हजुर, टोयलेट सफा गराउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्, हामी 5 मिनटमै टोयलेटको सेफ्टी ट्याङ्की र रिङ खाली गर्नेछौ।
7: अनि सुन्नुहोस् त, हामी कहाँ निर्माण कार्यका लागि चाहिने गिट्टी र ढुङ्गा पाइनुका साथै निर्माण कार्यका लागि चाहिने सिँचाइको सुविधा पनि रहेको छ है।
5: सम्पर्क अनुप किसान सेनेटरी, बारगङ्गा 1 मनरेली टोल, बठनपुर कपिल वस्तु,
7: प्रोप्राइटर नोने थारू।
6: सम्पर्क नम्बर 98144-49-450 र 98-76-31-393।
8: ए विवेक, वहाँ प्रभार घास के उठना जाओ तो।
9: अरे बाप रे बाप, मरी गान।
8: ए साथी लोग, तोहरी लोग एक छिन फुटबॉल बंद करो तो, वो देखो विवेक के का होगा, वहाँ झाड़ी को ना जाओ कहे रहे।
10: ओ देखाओ, सब भाग गवा उहर, विवेक का काट ली इसकी का। उफ, स्कूल के फुटबॉल देखे आए रहन और केस दुर्दशा आए पड़ा।
9: अरे अम्मा तो सांप काट ली, अब मर जावा।
8: विवेक ढेर ना घबराओ साथी, अच्छा साथ होई के ढेर हिल डुल ना कह के बैठो, तुमका हमारे स्वास्थ्य केंद्र पहुँचावा जी। ए पारस, वहाँ घर के भैया का मोटरसाइकिल लेके आओ कहो तो।
10: हाँ विवेक का ही खुला जगह पर सुताओ, ढेर हिलावे डोलावे न कहके, हम यही कापी से हौकित हैं, गठिया के कुछ निचवा काटे हैं, फूलत है, काटी लिया जगह का छुए और चलावे न ही चाहिए,
8: अब हम विवेक का साहस हुए कह के ओकर कसा पेटी बटन सब खोल दी थे और घड़ी और अंगूठियों निकाल दी थे।
10: बहुत है रोशन, हम इधर विवेक के जूता और मोजा धीरे धीरे निकाल देते हैं।
11: ढेर जैसन सांप के जसाई खतरनाक नहीं होते है, समय पर उपचार कई मिले पर विषालु सांप काट लिए व्यक्ति का बचाई सका जाता है। सांप काट लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में पहुंचाई दिए से उनके बड़वार क्षति हुए से बचाई सका जाता है।
8: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहीं के पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
12: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: गुमा ए असोज 25 गते देखि काठमाडौं बीएनबी अस्पतालका हाड जोड्ने नसा तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
1: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक अल्सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुतो, दाज, पुतले, दुबे, चाया, डन्डीफोर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाड जोड्नेका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, जोर्नीहरू दुख्ने, नचल्ने, नसा च्यापिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यापिएको, भाँचिएको, हाड जोड्नेका विशेष अपरेसन र बालरोगसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
0: सम्पर्क पाल्पा भैरव मेडिकल हल, श्रवण पथ बोटवल, साझा हस्पिटलको अगाडि।
1: सम्पर्क नम्बर 071-534-905, 071-553-905 र मोबाइल 98-570-78-010।
2: कता हो काका लखर लखर गर्दै?
3: कहाँ हुन्थ्यो बाबु? यो छोराले विदेशबाट पठाइदिएको एलइडी टिभी पनि बिग्रियो, इन्भर्टर पनि त्यस्तै छ, छोराले अमेरिकाबाट पठाइदिएको यो आइफोन के गर्दा भइमा खस्यो, यो पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर म त आज बिहानै उठेर हेर बाबु, यो 4 नम्बर जितपुरमा रहेको शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर एन्ड मोबाइल मर्मत सेन्टरमा गएर बनाएर लिएर साँझ चडक्क बुढाबुढी बसेर टिभी हेरौँला नातिले, मोबाइलबाट फोन गर्ला बाबुला भनेर बिहानै दौडेको छु।
2: मेरा पनि घरका सबै इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बिग्रेर कामै नलाग्ने भएका छन्, कहाँ लाँदा ठिक हुन्छ होला?
3: ल होइन, सँगै जाम शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र 4 नम्बर जितपुरतिर।
2: हजुर, हाम्रा सेवाहरू,
3: हामी कहाँ सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिनुको साथै आइफोन, एन्ड्रोइड फोन, मोबाइल फोनहरू दक्ष प्राविधिकद्वारा चिप लेभल मर्मत सुविधा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउँछौ, साथै नयाँ मोबाइल पनि पाइन्छ। अन्य विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र 4 नम्बर जितपुर कपिल वस्तु, प्रोप्राइटर सञ्जय श्रेष्ठ एन्ड विजय श्रेष्ठ, 98-46-19-125 र 98-75-52-004।
4: यो युनाइटेड हस्पिटल यही होइन र भएको, कहाँनिर सरेछ र? बिरामी भएर बस्न खाना छैन, हस्पिटल भेटिने होइन।
5: ए दिदीले युनाइटेड हस्पिटल खोज्दै आउनु भएको? यो त सरेर आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनमा गएको छ नि। ल, 4 नम्बर चोकबाट अटो चढ्नुहोस्, त्यसपछि तौलियोवा रोड हुँदै 2 किलोमिटर अगाडि जानुहोस्, त्यहाँनिर ठुलो बोर्डमा युनाइटेड हस्पिटल लेखिएको छ, त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँको समस्याको समाधान भइहाल्छ नि। अनि दिदी, युनाइटेड पहिलाको जस्तो छैन नि, अहिले त धेरै सुविधा सम्पन्न भएको छ। तपाईँलाई जे समस्या भयो त्यसको विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार हुने भएकाले कुनै चिन्तै लिन पर्दैन।
6: हजुर, विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट चेक जाँच हुने जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न एकमात्र अस्पताल युनाइटेड हस्पिटल, बारगुङका 4 ठाकुरापुर र झुङ्गाको बीचमा। यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर सहित दैनिक ओपिडी सेवा, पेट छाती मुटु तथा सुगर रोग विशेषज्ञ सेवा, हाड जोड्ने सम्बन्धी, हड्डी भाँचिएको, रडहरू राख्ने निकाल्ने, महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा, मेजर अपरेशनहरू, एपेन्डिसाइटिस, पाचेघर फाल्ने, हर्निया, पित्त थैलीको ढुङ्गा निकाल्ने, चिरेर बच्चा निकाल्ने लगायतका साना ठुला अपरेशन
5: 24 घण्टा सेवा उपलब्ध छ।
6: नभुल्नु होला, 100 रुपियाँ
0: विस्तृत जानकारीका लागि युनाइटेड अस्पताल बारगन्दा 4 ठाकुरापुर कपिल वस्तु, फोन 076-550-200, मोबाइल 98-570-55-138।
7: सिद्धार्थ नगर सिटी हस्पिटल द्वारा गरिब, विपन्न तथा न्यून आय भएका बिरामीहरूको लागि सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। सस्तो सुलभ कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध सेवाहरू सस्तो सुलभ ओपिडी, सस्तो सुलभ वार्ड, सस्तो सुलभ आइसीयू तथा एनआईसीयू सेवा, सिटी स्क्यान, ल्याब, यूएससी, एक्सरे, इन्डोस्कोपी सेवा, सस्तो अपरेशन प्याकेज, सस्तो सुलभ कार्यक्रमका विशेषताहरू, न्यून शुल्कमा उल्लेखित सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिने, बिरामीको संख्या अनुसार नर्सिङ स्टाफको व्यवस्था, आधुनिक प्रविधि सहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान, अनुभवी डाक्टरद्वारा परामर्श, स्वच्छ सफा परिवार मैत्री वातावरणमा छिटो छरितो सेवा। सम्पर्क सिद्धार्थ नगर सिटी हस्पिटल, मायादेवी 8 भैरहवा रूपन्देही, मोबाइल 97-464-0-2490। पुनश्च सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि बिहान 7:30 देखि 9:30 सम्म टिकट लिइसक्नु पर्नेछ।
8: हमने साथी का सांप काट लिया। का हुई बहनी, आप कहे चिल्ला बजा से? अरे ये भुइया में के हुए?
9: सुना जाए ना भैया, हमारी दोनों से निकास काटे आए रहे, हमारी साथी का सांप काट ली। अब कहा कर रहे, एक जल्दी उपचार केंद्र पहुँचाए मिला तो ठीक रहा।
8: ओहो, ऐसा समय पर एम्बुलेंस और चार चक्का गाड़ी खोज के अगोर के ना बैठे चाहिए। यह नक्चरवे के गांव में हमारे एक दिन मोटरसाइकिल भवा साथी है, फोन करी थे हम, आप ना घबरावा जाए, साथी का ध्यान दिया जाए। हेलो मुकेश, तू तुरंत मोटरसाइकिल लेके यहाँ आओ तो, यह एक जनी बहनी का सांप काट लिए से, इमरजेंसी हो गया, तुरंत उपचार केंद्र ले जाए पड़ा, राजमार्ग चौराहा से 100 मीटर पच्छू बायोवर हन हमरे। मुकेश जल्दी आओ ना सब काम छोड़ के।
10: होते संतोष, हम मोटरसाइकिल लेके चले आए।
8: सुना जाए बहनी, सांप काट लिया व्यक्ति का जितना हो सके उतना जल्दी एंटी वेनम उपलब्ध रहा स्वास्थ्य केंद्र में ले जाए चाहिए। ऐसे समय पर जल्दी होने वाला यातायात के साधन छनौट करे के चाहिए। यदि मोटरसाइकिल की व्यवस्था है तो अपने और सवारी चालक के बीच में सांप काट लिया व्यक्ति का सुरक्षित हुए मेर से तुरंत उपचार केंद्र पहुँचावे के चाहिए। वो देखो मुकेश मोटरसाइकिल लेके आए गवा, हमारे विश्वसनीय साथी है, हम तुरंत बीमरिया का अपने और मुकेश के बीच में रख के मोटरसाइकिल से उपचार केंद्र पहुँचाए थे। आप हमारे साइकिल लेके वहरे आओ।
9: ओके भैया, बहुत ही सहयोग करा गई, चला जाए, जल्दी चला जाए।
11: याद रखा जाए, सांप के डसे के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र जाए के जान बचावा जाए।
12: यदि समय पर उपचार कई मिले पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाए सका जाता है और इनसे होए वाला मृत्यु दर कम कर सका जाता है। सांप डस लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ये वह व्यक्ति के जीवन बचाव एक बहुत मदद करत है।
8: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे, आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
13: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
14: शान्ति र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ज।
15: ओए के रेको, ओए उता हेर त
16: मिलिसक्यो

0: attention, please. 3, 2, 1. 89.6. Christian Love Station Radio.
1: बुद्ध आवाज
2: मेरो त घर बनाउने धोको पनि अरूको देख्दा देख्दै सकियो। त्यो हरिदाईको घर हेर्दा राम्रो भएर के गर्नु? धाराका पाइपहरू सबै फुटेर नुहाउने बाथरूम किचन टोयलेट गइसक्नु छैन। मलाई त झन् केही थाहा छैन कस्ता पाइप धारा ठिक हुन्छन्। फेरि त्यति मात्र भएर पनि भएन, छड सिमेन्ट पनि चाहियो। साह्रै तनावको काम रहेछ।
3: हजुर, यस क्षेत्रकै विभिन्न क्वालिटी युक्त हार्डवेयर सामानका लागि ग्रिसमा सप्लायर सबैको रोजाइमा रहेको पञ्चकन्याका सीपीडीसी पाइप फिटिङका सामानहरू, धाराका आइटम, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका छड, सिमेन्ट, पानी ट्याङ्की, कम्बट सिटहरू, मार्बल, सोमानी कम्पनीका ट्रायल, होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ।
2: हजुरलाई समय पनि कम लाग्ने, हरेक सामानहरू फिट गर्न सजिलो हुने, पाइपहरूमा खिया लाग्ने र चुहिने समस्याको समाधान।
4: सुन्नुहोस् त, हामी कहाँ टाइल, ग्रेनाइट, बेन काडो, बाथ फिटिङ, सेनेटरी र मोडुलर किचन सेट सम्म उपलब्ध छ है।
3: सम्पर्क ग्रिसमा सप्लाइज, बारगंगा बैरिया कपिल वस्तु, फोन 076550317, मोबाइल 98571713। सञ्चालक श्रीराज कडे।
5: ओहो काका, अनुहार न्याउरो बनाएर झोला बोकेर टाढै लाग्नु भयो कि क्या हो?
6: हेर न भतिजु, म त पाइल्स भएर निकै समस्यामा पो छु त। दिशा गर्दा मासु बाहिर निस्किन्छ, रगत पनि आउँछ, अनि तेरो काकीलाई पनि पाठे घरको समस्या छ। त्यही भएर हामी त आयुर्वेदिक औषधि उपचार गर्न काठमाडौँ जान लाग्यो नि।
7: काका, त्यसको लागि तपाईँले चिन्तै नलिनुहोस् न। दुई दशकदेखि सेवा दिँदै आएको हाम्रै गजहेडा बजार बुद्ध चोकमा भर पर्दो र विश्वासिलो उत्तम फार्मेसीमा थप सेवा सहित कुकुब आयुर्वेद औषधालय छँदैछ नि। तपाईँ कहुनुहोस्, तपाईँको समस्याको समाधान सफलतापूर्वक हुन्छ।
8: हाम्रा सेवाहरू पायस, मलद्वारमा मासु पलाएको, दिशा बस्दा रगत देखिने, चिलाउने, फिस्टुला मलद्वारको दुई तिन अङ्गुल छेउछाउमा ससाना घाउ खटेर आउने, भिख निस्कने, फिसर मलद्वारमा चिरा परेको, दिशा बस्दा अत्याधिक दुखाइको महसुस हुने,
9: महिलामा हुने समस्या महिनावारी गडबडी, सेतो पानी बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, आङ खस्ने, यौनाङ्ग चिलाउने, बाँझोपन तथा यौन चाहना नहुने, पुरुषमा हुने समस्या शीघ्र पतन, उत्तेजनामा कमी, यौन दुर्बलता, यौन चाहना नहुने, पेट सम्बन्धी समस्या, ग्यास्ट्राइटिस, ग्यास्ट्रिक अल्सर, गानोगोला, अपच, कब्जियत, आइबीएस, जन्डिस, मृगौलाको पथरी तथा अन्य पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार तथा परामर्श सेवा, पुरानो भन्दा पुरानो बाथ, युरिक एसिड तथा गर्दन ढाड कम्मरमा नसा च्यापिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, अत्याधिक पोल्ने, सिल्का हान्ने तथा अन्य हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्याको पञ्चकर्म, अग्निकर्म तथा फिजियोथेरापी द्वारा सफल उपचार,
8: छाला सम्बन्धी समस्या, नयाँ तथा पुरानो एलर्जी, अनुहारको चाया पोतो डन्डी फोर, दाग, सेतो दुबी, छालामा चाला आउने तथा सोराइसिस रोगको पञ्चकर्मद्वारा सफल उपचार तथा परामर्श,
9: दैनिक बीएमएस डाक्टर दिनेश थारूद्वारा चेक जाँच तथा परामर्श सेवा, प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर हरिशंकर चौधरीद्वारा चेक जाँच तथा परामर्श सेवा। सम्पर्क उत्तम फार्मेसी कुकुब आयुर्वेद औषधालय, चार बुद्ध चोक कपिल वस्तु, मोबाइल 98473664666 र 98214152191।
8: सुन्नुहोस् त, हामी कहाँ बिना अपरेशन छार सूत्र विधिद्वारा पाइस, फिस्टुला र फिसरको सफल उपचार गरिन्छ।
10: ओहो, देखा जाए न मुस कुदर्छ।
11: उहे तो बरसात के समय है, बखार के आना खुले है कि मुस आए तो अब मुस हेरत सपबो आई सकत है।
10: ओहो हाँ, तो सही है, याद हुई गवा। घर के आसपास झाल झुंगा बढ़ के बहुत बड़ा हुई गवा है, काटेक रहा।
11: हाँ ऐसा करा जाए, तब काल सवेरे पूरी तरकारी नाश्ता करा जाए और सब परिवार मिलकर सर सफाई करे के हुई और आसपास के फोहर व्यवस्थापन करे के हुई ना।
10: होत है ऐसे समय पर तो बड़बार घास फुहर गंदगी रहा जगह पर सांप लुकाई के बैठा हो सकत है ना।
11: वही से तो कही थे, बिटिया समीरा, बेटवा विवेक, तोहरे सब और हम मिलकर घर के आसपास का बड़वार घास काट दिया जाए, काल लाएगा जलावन घरे से कुछ दूर व्यवस्थापन कर दिया जाए, डेहरी के आना सांप मूस न हले के में से मरम्मत कर दिया जाए और घर के आसपास खाली और साफ होने के बाद सांप आवे के अपने कम हो जाए ना।
10: हाँ, काल सनिचरो हुए सवेरे सब फुर्सते में हो जाता है।
1: सांप बरसात के समय में सूखा जगह पर रहना पसंद करते हैं। यह मौसम में अपने वास स्थान पर पानी चल जाए नाते सूखा जगह के खोजी में वो लोग बाहर निकलते हैं।
12: मूस मुर्गी जैस चारा के खोजी कार्यक्रम में सांप मानव बस्ती नेरे आ सकते हैं।
1: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करें और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहीं के पता लगाए आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाते हैं।
13: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
4: कता हो काका लहर लहर गर्दै
14: कहाँ हुन्थ्यो बाबु? यो छोराले विदेशबाट पठाइदिएको एलईडी टिभी पनि बिग्रियो, इन्भर्टर पनि त्यस्तै छ, छोराले अमेरिकाबाट पठाइदिएको यो आइफोन के गर्दा भइमा खस्यो यो पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर म त आज बिहानै उठेर हेर बाबु, यो चार नम्बर जितपुरमा रहेको शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर एन्ड मोबाइल मर्मत सेन्टरमा गएर बनाएर लिएर साँझ चडक्क बुढाबुढी बसेर टिभी हेरौँला नातिले मोबाइलबाट फोन गर्ला बाउला भनेर बिहान बिहानै दौडेको छु।
4: मेरा पनि घरका सबै इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बिग्रेर कामै नलाग्ने भएका छन्, कहाँ लाँदा ठिक हुन्छ होला?
14: ल होइन सँगैजाम शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र चार नम्बर जितपुरतिर।
4: हजुर हाम्रा सेवाहरू,
14: हामीका सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिनुको साथै आइफोन एन्ड्रोइड फोन मोबाइल फोनहरू दक्ष प्राविधिकद्वारा चिप लेभल मर्मत सुविधा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउँछौ, साथै नयाँ मोबाइल पनि पाइन्छ। अन्य विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र चार नम्बर जितपुर कपिल वस्तु प्रोप्राइटर सञ्जय श्रेष्ठ एन्ड विजय श्रेष्ठ 98 46 19 125 र 98 572 5204।

0: राज्यपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: के छ हो धुनुस भाई, भाले बगेर कता
2: भाकल?
1: के को भाकल हौ?
2: सुन्तालीको जिउमा दाग आएर हात खुट्टा पनि झम झम गर्छ भन्छ। जान्नेलाई देखाएको देउताको श्राप लागेर यस्तो भाको रे, त्यसैले भाले चढाउन।
1: यस्तो पनि हुन्छ?
2: म पाँच चार भाड हिँड्न हेर्नुहोस् त,
1: यो त कुष्ठरोगको लक्षण जस्तो छ। शरीरमा यस्तो रातो खुसो दाग देखिनु, अनुहारको छाला तथा कानकुलोती बाक्लो हुनु, शरीरमा गिर्खाहरू देखा पर्नु, दागमा छुँदा थाहा नपाउनु, मांसपेशीहरू कमजोर हुनु कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन्। तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराइहाल्नुहोस्।
2: तर जान्नेले त यो देउताको करामत भन्छ त?
1: यो देउताको होइन, कीटाणुको करामत हो।
3: भाकल छाकल छोडौँ धुर्मु, उहाँले भने यस्तै जता र औषधि खान थालिहाल्नु पर्छ कि।
4: कुष्ठरोगको समयमै उपचार गरौ, अङ्गभङ्ग हुनबाट बचौ बचाउ।
5: जनहितका लागि जारी सन्देश, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग।
6: ए रजनी, ऊ वही लम्बा डन्डा है, जल्दी लेके आओ तो।
7: अरे ये मुर्गी का दाना देख समय पर आप कहे डंडा खोजा जाता?
6: एक ठू सांप है मुर्गी के फार्म लगे, ओका डंडा से डरवाई के भगावे के पड़ा, जल्दी लाओ ना।
7: अरे साहब का नहीं चला चाहिए ना, नहीं तो हमरे इनका डस सकत है, रह दिया जाए, बल्कि घर भीतर आए तो भगाओ खोई।
6: रजनी, फार्म में हल्के मुर्गी मार दे या खाई ले, यही नाते भगावे के चाहत रहे।
7: फार्म में कीड़ा मकोड़ा मूस सांप न हले कह के तार जारी लगाए हन, सांप मुर्गी के नुकसान नहीं करी, बल्कि आपका ना डस ले दूर रह जाए।
6: ए सही कहे, का करे, सांप देख के बाद डर लग जाते है। अरे सांप तो लौट के बेहवा के ओर चले गवा।
7: हमरे घर ना ही सपन से डेरावा जात है, उनहरियो हमरे से डेरा था। यदि केहू जान अनजान में चलावत के प्रतिरक्षा करे के या आपन बचाव करे के खातिर सांप डसत है।
8: सांप से दूर रहा जाए, सांप का न चलावा जाए या न चिढ़ावा जाए। सांप आदमी से डेरात है, न चलाई के दूर रहे पर सांप न ही डसी, लेकिन उ सब खाना के खोजी में बहरे निकरा समय पर घास काटत के खेलत के चलत के छुई गए पर आदमी आक्रमण करत है सोच के प्रतिरक्षा करे के क्रम में सांप डसत है। आदमी सांप देखते भरे में मारे लागत है, ऐसन करत के सांप डस लेत है।
9: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय जानकारी के खातिर और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में देखी सका जात है।
10: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
11: यो मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डडेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
12: बन्डडेलोका कारणहरू:
13: चुरोट बिडी तथा चलाएका काँटीहरू ननिभाई फाल्नु,
12: खेतबारी सफा गर्न लगाएको आगो राम्रोसँग ननिभाउनु,
13: वनभोज स्थलमा आगो ननिभाई छोड्नु,
12: जंगली जनावर भगाउन आगो लगाउनु,
13: चट्याङ जस्ता प्राकृतिक कारणबाट आगो लाग्नु।
12: बन्डडेलोका असरहरू:
13: रुख बिरुवा तथा वन्य जन्तुमा क्षति, पानीको मुहान सुक्दै जाने, कृषि उत्पादनमा कमी हुने,
12: वातावरणीय प्रदूषण,
13: जैविक विविधतामा ह्रास,
12: मानव वन्य जन्तु बीचमा द्वन्द,
13: बस्तीसम्म फैलन गई मानवीय तथा भौतिक संरचनामा क्षति,
11: हरित गृह ग्यास उत्सर्जन भई जलवायुमा परिवर्तन आउनु,
12: तसर्थ वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बोल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौ।
13: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौं।
11: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
12: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
11: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौं।
13: सुन्नुहोस् त,
12: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
14: वन डडेलो रोकौ, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौ। अनुरोधक अध्यक्ष दिनेश प्रसाद जयसवाल एवं
15: माया देवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूह पटना कपिल वस्तु।
16: सम्पर्क नम्बर 98473 0223 98264 62 96।
17: एसएए उत्तीर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई सहित एस एभरेस्ट इंग्लिश माविमा व्यवस्थापन संकाय तर्फ होटल म्यानेजमेन्ट फाइनान्स कम्प्युटर बिहारी समूह तथा विज्ञान संकाय तर्फ बायोलोजी कम्प्युटरमा दिवा समूहका लागि कक्षा 11 भर्ना खुल्यो।
18: प्रवेश परीक्षा 2083 जेठ 4 गते सोमबार बिहान 10 बजे। नतिजा प्रकाशन जेठ 4 गते सोमबार साँझ 4 बजे। भर्ना प्रारम्भ जेठ 4 गते नतिजा प्रकाशन पछि। साथै 2 र 3 गते शनिबार र आइतबार पनि विद्यालय प्रशासन खुल्ला रहनेछ।
17: प्रवेश परीक्षाका लागि बस छुट्ने समय कपिल वस्तु ओदारी 4 नम्बर बोडगाउँ चप्पर गाउँ र बनगाई बिहान 8 बजे। सालगण्डी रामापुर मुर्गिया फर्सा टिकर बिहान 8:30 बजे। परासी बजार बर्दघाट बिहान 8:30 बजे। सुनवल खैरेनी चरंगे बिहान 9 बजे। मणिग्राम भलवारी तथा बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र बिहान 9 बजे। प्रवेश परीक्षाको फर्मका लागि एसई ग्रेड सिटको कम्प्युटर प्रिन्ट 1 प्रति अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
18: विस्तृत जानकारीको लागि एभरेस्ट इंग्लिश बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय बुटवल 8 रूपन्देही, फोन नम्बर 071535962, मोबाइल नम्बर 98671009146, 98570159158, 98475151 र 98681 84976।
19: एभरेस्ट सदैव उच्च।
20: कता हो काका लखर लखर गर्दै?
21: कहाँ हुन्थ्यो बाबु? यो छोराले विदेशबाट पठाइदिएको एलईडी टिभी पनि बिग्रियो, इन्भर्टर पनि त्यस्तै छ। छोराले अमेरिकाबाट पठाइदिएको यो आइफोन के गर्दा भइमा खस्यो, यो पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर म त आज बिहानै उठेर हेर बाबु, यो 4 नम्बर जितपुरमा रहेको शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर एन्ड मोबाइल मर्मत सेन्टरमा गएर बनाएर लिएर साँझ चडक्क बुढाबुढी बसेर टिभी हेरौँला नातिले मोबाइलबाट फोन गर्ला बाबुला भनेर बिहान बिहानै दौडेको छु।
20: मेरा पनि घरका सबै इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बिग्रेर कामै नलाग्ने भएका छन्, कहाँ लाँदा ठिक हुन्छ होला?
21: ल होइन सँगैजाम शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र 4 नम्बर जितपुरतिर।
20: हजुर, हाम्रा सेवाहरू,
21: हामीका सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिनुको साथै आइफोन एन्ड्रोइड फोन मोबाइल फोनहरू दक्ष प्राविधिकद्वारा चिप लेभल मर्मत सुविधा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउँछौ। साथै नयाँ मोबाइल पनि पाइन्छ। अन्य विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र 4 नम्बर जितपुर कपिल वस्तु प्रोप्राइटर सञ्जय श्रेष्ठ एन्ड विजय श्रेष्ठ 98446 19125 र 98572500004।
22: तपाईँ यति बेला सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाजको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा 89.6 MHz सँगै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ विभिन्न आधुनिक तथा पप।

0: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाउ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं।
1: अनुराधाकै डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु गौतम दत्त चन्द्रौता कपिलवस्तु।

0: पर्ने आवश्यक कागजातहरू, बीमा गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, बीमा लेखको प्रतिलिपि, बीमा गर्दा बीमा शुल्क बुझाइएको सकल रसिद, बीमा गरेको बाली वस्तुको फोटो, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, खाता रहेको बैंकको नाम र खाता नम्बर।
1: थप जानकारीका लागि बाढगंगा नगरपालिका कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ। सम्पर्क नम्बर 98 4 53 52 747, 98 4 70 52 954, 98 4 72 84 700 र 98 4 70 83 400। अनुरोधक बाढगंगा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि विकास शाखा, बाढगंगा कपिलवस्तु।
2: दादु, एक कप चाय के 30 रुपया कतरा महंगा। आजकल से कुछ चीज फिर पैसा वसूल नहीं हुई ना।
3: उठ जे भाई, अब एनसेल में पैसा वसूल
2: हो का?
3: हो जे, एनसेल में आप खाली 18 रुपया में एक दिन अलग 30 मिनट ऑल नेपाल कॉल संगे मज्जा से बटवाई सकती। तब नहीं हुई ते पैसा वसूल, गजब बाटे। अब मैं फिर पैसा वसूल करें। आजू *123 हैश डायल करी या एनसेल ऐप में जाके ई पैक खरीद करी। एनसेल, नेपाल के लड़।

year 2024 र 2025 को सम्मान Citizens Bank विश्वास को नाम Citizens Bank हजुर को प्रगति को सहयात्री।

0: नया वर्ष को अवसर में सेंसे का होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैश बैक पनी, र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।
1: यो नया वर्ष को अवसर में माइडिया का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैशबैक। साइड बाय साइड तथा मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर में फ्री इंडक्शन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में फ्री 6 केजी एरियल, टॉप लोड में फ्री 2 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, डिश वॉशर में वॉशिंग टैबलेट र माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट, हरेक खरीद में शॉर्ट शॉर्ट गिफ्ट र बम्पर में माइडिया 519 लीटर रेफ्रिजरेटर जितने मौका। नागरिकता भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।